0: only there.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: हम सब कहते हैं कि हम अच्छे से जीना चाहते हैं, पर कभी सोचा है कि जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन भरा हुआ है लालच के साथ। ये दिल मांगे मोर मोर एंड लॉट्स मोर। जरूरतों को तो किसी हद तक पूरा किया जा सकता है, पर ग्रीड को नहीं, बिकॉज दैट्स द कैंसर ऑफ द सोल। लालच रिश्ते बिगाड़ देते हैं। तो जब भी मन में कुछ जरूरत से ज्यादा पाने की तमन्ना जागे, तो अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछे, बट कैन आई अफोर्ड इट? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोज आई गेट इट, विल दैट गिव मी पीस ऑफ माइंड?

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: मिट्टी है पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है हर दौर को महका जाएंगे हम लोग, हम रूहे सफर है हमें नामों से न पहचानो, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। है ना हकीकत कि चाहे हमारे वजूद का एक अहम हिस्सा है हमारे नाम, फिर भी गौर से देखें कि कितने नाम आए और चले गए, बट जिंदा है सिर्फ वो ही नाम जो औरों को जीवन दे गए। कभी सोचें कि ऐसे नामों की लिस्ट में हम क्यों नहीं आए।

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: एह सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: चाहे हम लोग जानते हैं कि हम औरों के साथ बहुत कुछ गलत कर जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनइंटेंशनली या जानबूझकर, पर फिर भी मटेरियलिस्टिक इंसान है, आज के युग के इंसान है, मानेंगे थोड़ी। मैं तो सिर्फ ये मानती हूँ कि ना गलत ये दुनिया है, ना है किस्मत गलत, जो लगे गलत सब कुछ तो है नजरिया गलत। है खुदा ने दिया जिंदगी में जो कुछ खास, उसको यूं ही गलत कह के गंवाना ये है गलत।

दिन हम लोगों का अलग मूड होता है. कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब हम बहुत जीना चाहते हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन वी जस्ट फील लाइक डाइंग. लाइफ को देखने का अलग पर्सपेक्टिव हर अलग दिन के साथ. जब बहुत नेगेटिव फील करें तो आस ढूंढें. और आपको पता है कि ये जो आस होती है ना, ये अंधेरे से शुरू होती है, और एक बहुत जिद्दी टाइप की आस होती है जो अगर आपके नजरिए का हिस्सा बन जाए तो फिर

I've read a very interesting article recently about the journey of life. राइटर लिखते हैं कि उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, दूर अलग प्लेसेस में गए, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की, हर दिन नए लोगों से मिले और फिर शाम हो गई। वो सड़क के एज पर खड़े थे, लग रहा था कि जैसे सफर खत्म होने को है, पर इतना ट्रैवल करके भी राइटर को वो नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे। पता है वो क्या था? उनकी जिंदगी।

कहते हैं कि आप खामोशी में भी खामोशी से प्यार फील कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो कभी खामोश होता ही नहीं। एक जेंटल सी स्माइल, अ वार्म एंड टेंडर टच, कुछ अल्फाज एनकरेजमेंट के, खासकर उस समय जब आपको लगता है कि आप कोप नहीं कर सकते हैं, और अ वेरी सिंपल फ्रेज, लव यू, जब एक्चुअली आपके पास कोई भी नहीं होता, जब एक्चुअली आप सिर्फ उन्हें ख्यालों में ही मिलते हैं। ऑब्वियसली लव इज नेवर साइलेंट बिकॉज इट हैज सो सो सो मच टू से एंड गिव अवे।

0: जॉब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: आंखों में आंसू को गिरने न दिया, मिट्टी पे मोतियों को बिखरने न दिया, जिस राह पर पड़े थे तेरे कदमों के निशान, उस राह से हमने किसी को गुजरने न दिया। जी हाँ, दिस लव इज मैजिकल और अक्सर प्यार के इजहार में एक अहम जरिया है आंखें, जो बिन बोले बहुत कुछ बोल जाती हैं। वो आंखें जिन्हें हम खामोश अल्फाज कह दें, एहसास कह दें तो गलत ना होगा।

0: वो बहती नदी सी है और रुका हुआ हूँ मैं, अब उसके आगे कोई वजूद नहीं मेरा, खजाने सी है वो और लूटा हुआ हूँ मैं।
1: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
2: चाहे अपनों का साथ मिले या ना मिले, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो उनके लिए दुआ दुआ और सिर्फ दुआ मन से निकलती है। मेरा लव्स लव्स दुआ दुआ, मेरी आंखों से धुला हुआ, तुझे जिंदगी की वो सहर मिले, तुझे मोहब्बतों का सफर मिले, तुझे दर्द और गम ना कभी छू सके, तेरी आंख कभी न नम हो सके, तेरा प्यार जिस पे निसार हो वो हमेशा तेरे पास हो, ये दुआ हो कोई गिला नहीं, तुझे जिंदगी में वो सुकून मिले जो किसी और को कभी मिला नहीं।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: मुस्कुराहटों का मतलब ये कतई नहीं है कि आप आंसुओं को भूल जाएं, क्योंकि ये मुस्कुराहटों की तरह सिर्फ सुख में ही हमारे पास नहीं आते, गम में भी पूरा साथ निभाते हैं। दुख की घड़ी में आए तो दिल का बोझ हल्का कर जाते हैं और खुशी के मौके पर भी बस ऐसे ही निकल आते हैं। फिर हम इन्हें मुस्कुराहटों से कम क्यों समझें, क्योंकि ये तो ऐसी सौगात है जो बिन मांगे ही हमें मिल जाते हैं।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। कोशिश करें और खुद को गार्बेज बॉक्स न बनने दें, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई इंसान किसी को माफ नहीं कर पाता या करना नहीं चाहता तो वो एक्चुअली खुद को एक कमरे में बंद कर रहा है जहां बहुत अंधेरा है। पर एक दिन तो उसको वहां से बाहर निकलना होगा ना। इसलिए जब हम मन में इतने ग्रजेस, नफरत और रिजेंटमेंट पालते हैं तो हम किसी और को नहीं खुद को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में सबको पता है, बट थ्योरी इतनी अच्छे से पता होने के बावजूद प्रैक्टिकली हम नहीं जी पाते हैं।